0: को
1: नपारे दिखाई
0: तुम्हें जे देखाओ ताहरे
1: आलोक तुमको
0: नपारे दिखाई
1: तुम्हें जे देखाओ ताहरे
0: तुम्हें जे बेढ़ी च कोटी विश्वर सबुरी भीतरे बाहरे
1: तुम्हें जे बेढ़ी च
0: कोटी विश्वर सबुरी भीतरे बाहरे
2: இதுவரைக்கும் நீங்க எழுதிக்கிட்டது முதல் சரணம். இனி இரண்டாவது சரணம்.
0: லுஹா ஹோயி துமே ஜரி பட பரா கெத்தே நயனர கோணரு லுஹா ஹோயி துமே
1: ஜரி பட பரா
0: केते नयनर कोणरु हस होई पुणी
1: फूला परी फुट
0: केते जे नरम अधरु हस होई पुणी
1: फूला परी फुट
0: केते जे नरम अधरु केऊ नाम धरी डाकिबी तुमकु
1: तुमे जे सर्वनाम
2: பாடல முழுசா எழுதி முடிச்சாச்சு. ஆறு அக்ஷரம் கொண்ட தாத்ரா தாளத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடல். இப்ப எப்படி பாடுறதுன்னு கத்துப்போமா?
0: 1 2 3 4